0: कहते हैं
1: कवाई कवाई,
0: और आखिर में मुखातिब से अपनी बात की तस्दीक के लिए ने लगाएं। सामीन कोशिश करें।
2: चीसकते कवाई देसने, चीसकते कवाई देसने।
0: अब फर्ज करें कि किसी ने जापान की ट्रेनों से मुतालिक आपका तासुर पूछा है। आप कहना चाहते हैं ये वक्त की पाबंद और बासहूलत है। वक्त की पाबंद यानी
1: सेकुना सेकुना,
0: और बासहूलत
1: बेंडिना बेंडिना।
0: तो आप किस तरह कहेंगे?
3: सेकुदे बेंडी देसने, सेकुदे बेंडी देसने।
4: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज के लफ्ज मकालमे में कायतों ने खाने का डब्बा निकालने के बाद इस्तेमाल किया है
5: दोजो।
0: आज के मकालमे की तरह खाना या कोई और चीज़ पेश करते वक्त भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा यह किसी काम की इजाज़त देने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
4: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज़ में सुनिए।
5: दोजो
6: दोजो
5: दोजो।
4: सामीन, अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
1: दोजो।
0: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम अपने तासुरात का इजहार करती है।
5: ओ बेंटो दा यो, बुकु गा त्सुकुत्तान दा, दोज़ो।
7: किरे, सुगोई, इतादाकिमास। कोनो तमागो याकी, अमाकुते ओइशी देस।
8: काइतो वा, होंतो नी रियोरी गा जोज़ु दा ने।
5: बुकु, शेफु नी नारिताई दा।
8: ई ने।
4: अब हारूसान की जंबील का कॉर्नर। आज का मौजू है ओहानामी, यानी चेरी के फूलों का नजारा।
0: हिरा, आप जापान आकर ओहानामी से तो यकीनन लुत्फ़अंदोज़ हुई होंगी।
4: जी यकीनन, मौसम बहार में खूबसूरत गुलाबी फूलों से लदे चेरी के दरख्तों के साथ चहलकदमी करना और उनके नीचे बैठकर खाना पीना बहुत पुरलुत्फ होता है।
0: चेरी के फूल मार्च से मई तक जुनूबी इलाकों से शिमाली इलाकों की जानिब खिलते जाते हैं। मुल्क भर के लोग अपने अपने इलाके के फूल खिलने के मुतवक्के वक्त से मुतालिक महकमे मौसमियात की पेशगोई और खिलने के मौजूदा मरहले के ऐलानात के मुंतजर रहते हैं, ताकि इसी लिहाज से अपनी अपनी पिकनिक की मनसूबाबंदी कर सकें।
4: तो ज्यादातर लोग ओहानामी के लिए कहाँ जाते हैं?
0: कई लोग अपने अपने इलाके के बागात या सड़कों के किनारों पर लगे चेरी के दरख्तों पर फूलों के नज़ारे से लुत्फ़अंदोज होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ओहानामी के लिए मशहूर मकामात का रुख करते हैं। टोक्यो में उएनो पार्क और शिंजुकु ग्योए नेशनल पार्क मकबूल मकामात हैं। इनके अलावा दरियाए सुमीदा और दरियाए मेगुरो के किनारे लगे चेरी के दरख्त भी ओहानामी के लिए मकबूल हैं। रात के वक्त बर्फी कुमकुमों से आरास्ता चेरी के दरख्त भी देखने से ताल्लुक रखते हैं।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 27 अगस्त बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने मध्यवर्ती जापान में मूसलाधार वर्षा के प्रकोप का सामना कर रहे इलाकों में सर्वोच्च स्तर की आपात चेतावनी जारी की है। इशिकावा और तोयामा प्रीफेक्चरों की 5 नगर पालिकाओं में बृहस्पतिवार सुबह स्तर 5 की आपात चेतावनी जारी की गई। इनमें इशिकावा प्रीफेक्चर का हाकुई शहर, शिकार नगर, होदात्सु शिमिजु नगर और नाकानोतो नगर तथा तोयामा प्रीफेक्चर का हिमी शहर शामिल है। अधिकारी इन क्षेत्रों के लोगों से बाढ़ और भूस्खलन से बचने के यथासंभव प्रयास करने का आह्वान कर रहे हैं। एजेंसी के वायुमंडल व महासागर विभाग के होसोमी ताकुया का कहना है, हमने अब तक इतनी ज़बरदस्त वर्षा नहीं देखी। विशेष रूप से बाढ़ की आशंका वाले जिस क्षेत्र में स्तर 5 की चेतावनी जारी है, वहां शायद आपदा आ चुकी है। लोगों की जान को तत्काल खतरा है, इसलिए कृपया अपनी सुरक्षा के तुरंत कदम उठाएं। इसके अलावा इशिकावा, तोयामा और नीगाता प्रीफेक्चरों के कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन के संबंध में स्तर 4 की आपात चेतावनी भी जारी की गई है। अधिकारी निवासियों से सुरक्षा सुनिश्चित करने और भूस्खलन के प्रति सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं। होकुरिकु क्षेत्र में शुक्रवार तक रुक रुक कर भारी वर्षा जारी रहने की आशंका है। नेपाल और चीन में बचाव दल बड़े पैमाने पर हुए मृदास्खलन और अचानक आई बाढ़ के बाद राहत प्रयासों में जुट गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में आई इस आपदा में कम 160 लोग मारे जा चुके हैं। बुधवार को नेपाल के मध्यवर्ती भाग में एक प्रलयकारी मृदास्खलन हुआ, जिसमें पुलिस के अनुसार 157 लोग मारे गए। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार 341 विदेशी पर्यटकों सहित 403 लोग अब भी लापता हैं। वहीं चीन के सरकारी मीडिया का कहना है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के शिगात्से शहर में हुए मृदास्खलन में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 260 विदेशियों सहित 558 लापता हैं। ईरान का कहना है कि वो ओमान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में नए नौवहन मार्गों और बारूदी सुरंगें हटाने की प्रक्रिया पर चर्चा कर रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि जलडमरू मध्य को पूरी तरह से बारूदी सुरंगों से मुक्त कर दिया गया है। ईरान और ओमान के विदेश मंत्रियों के बीच परामर्श के बाद ईरान ने मंगलवार को ओमान के साथ एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। इसमें कहा गया है कि दोनों पक्षों ने खाड़ी जल क्षेत्र से सटे देशों के साथ संयुक्त चर्चा करने के महत्व पर बल दिया। ऐसा लगता है कि ईरान अमरीकी भागीदारी के बिना जलडमरू मध्य के लिए नए नियम बनाना चाहता है। इस बीच ट्रंप ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें सूचित किया गया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सभी बारूदी सुरंगें या तो हटा दी गई हैं या उन्हें उड़ा दिया गया है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ईरान को सूचित कर दिया गया है कि नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले किसी भी जहाज को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा, हम स्पेस फोर्स से जलडमरू मध्य के हर इंच पर नज़र रख रहे हैं। उन्होंने कहा, बारूदी सुरंगें बिछाने की हरकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान और विदेशों के विशेषज्ञों ने एक संगोष्ठी में ज्वालामुखी आपदा की तैयारी पर चर्चा की है। ये कार्यक्रम बुधवार को यामानाशी प्रीफेक्चर के फुजियोशिदा शहर में हुआ, जो फुजी पर्वत की तलहटी में स्थित है। मध्य और दक्षिण अमरीका के ज्वालामुखी वैज्ञानिकों सहित लगभग 170 लोगों ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन का आयोजन प्रीफेक्चर के फुजी पर्वत अनुसंधान संस्थान और अन्य संस्थाओं द्वारा किया गया। मेक्सिको के एक शोधकर्ता ने कहा कि सन 2000 में उनके देश में हुए एक ज्वालामुखी विस्फोट में पहले से संकलित पलायन मार्गों, आपदा मानचित्रों और अन्य सामग्रियों का उपयोग करके 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया था। कागोशिमा शहर के साकुराजिमा ज्वालामुखी आपदा तैयारी संस्थान के प्रमुख ने पलायन योजना की व्याख्या की, जिसमें चेतावनी स्तर के अनुसार पलायन मार्ग, परिवहन साधन और अन्य विवरण शामिल थे। साकुराजिमा में ज्वालामुखी गतिविधि जारी है। उन्होंने बताया कि फुजी पर्वत सहित कई ज्वालामुखी आधुनिक निगरानी नेटवर्क विकसित होने के बाद से फटे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न प्रकार के सिमुलेशन चलाकर उन क्षेत्रों की पहचान की जाए जहां लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, ताकि भूकंपों में वृद्धि जैसी असामान्य घटनाओं के होने पर पलायन प्रक्रिया शुरू की जा सके। गौरतलब है कि भूकंपों की संख्या में वृद्धि आसन्न विस्फोट का संकेत होती है। यामानाशी प्रीफेक्चर के संस्थान के योशीमोतो मित्सुहिरो ने बताया कि फुजी पर्वत लगभग 300 वर्षों से नहीं फटा है। उन्होंने कहा कि संस्थान जापान और विदेशों में ज्वालामुखियों के बारे में प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हुए आपदा से निपटने की तैयारियों को बढ़ावा देना जारी रखेगा। विभिन्न उद्योगों की कंपनियों के एक समूह ने फिजिकल एआई मॉडल विकसित करने के लिए टोक्यो के पास एक सुविधा केंद्र खोला है। ये तकनीक एआई को रोबोट और अन्य प्रकार की मशीनों का स्वायत्त नियंत्रण संभालने में सक्षम बनाती है। इस समूह की 5 कंपनियों में ओसाका की एक ट्रेडिंग कंपनी और टोक्यो की एक दवा कंपनी शामिल हैं। उन्होंने बुधवार को चिबा प्रीफेक्चर में स्थित सुविधा केंद्र में मीडिया को आमंत्रित कर दिखाया कि कर्मचारी एआई संचालित ह्यूमनॉइड रोबोटों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। साझेदार कंपनियों का लक्ष्य श्रम की कमी को दूर करने में मदद करने के लिए अपनी अपनी असेंबली लाइनों के लिए फिजिकल एआई विकसित करना है। उनका कहना है कि विभिन्न व्यवसायों के बीच सहयोग से विकास में तेजी आ सकती है और इसमें शामिल भारी लागत को साझा किया जा सकता है। समूह को उम्मीद है कि वो वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान एआई संचालित रोबोटों का परीक्षण शुरू कर देगा। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।